Biləcəm ənkəməsə qədər ilə qədər çəncə bir peşmələtlər.

और सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है। और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा व्यस्त होती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम करते रहेंगे, तो ये सब आप

क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुँच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोम है विषय में अभी आपकी कविता में पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स में रहते थे, तो आप करते गए पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है, तो आपने बीए हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति

0: और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूं।
1: जी,
0: ईश्वर की सबसे सुंदर रचना जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है, उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के

0: गया, लॉ सब हो गया।
1: अच्छा
0: बस क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में कुछ नहीं करना है।
1: अच्छा
0: तो मैं कहा ठीक है, मैं कब का उसको पास में एक स्कूल था छोटा सा और उसमें मैं जाने लगी।

कीचड़ नीचे

subscribe now and press the bell icon.

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये तुम्हारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं तुम्हें?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है।
2: बड़े
0: वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है,
2: अच्छे
0: लेकिन इस बार
2: लगते हैं।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

ते फुले मुडाले ती ही फुले मोगरा फुलला मोगरा फुलला जेवढी फुले

You are gifted. That's it for Tiger. 경제적으로 맞아서 두르니 바보.

हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कैसे कभी। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना कि किस तरीके से हमारे मित्र अभिजीत अयंग और राहुल सफर जी ने अपने कविता की जर्नी को, अपनी कवि की जर्नी को इस कैसे कभी के माध्यम से सुनाया, हमें बताया, तो आज हमारे साथ एक और इस हार में जुड़ने और मोती आ गए हैं। नाम है मोनिश वारसी। मोनिश जी अपने उम्र से बहुत ज़्यादा गहरी बातें कह देते हैं, बहुत आसान और बहुत सहज तरीके से। लहजा बहुत सिंपल सा पर बातें इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल कि शायद ये बातें कह रहे तो हमें सोचने में इतना वक्त लग जाए कि क्या बात कही थी और क्या मतलब निकला, और वो प्रोसेस होने में और वो प्रोसेस होके रिजल्ट आने में इतना समय बीत जाता है कि दूसरी बात कैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो इंटरव्यू होगा ये बहुत ज़्यादा उन सारी बातों को उजागर करेगा जिसमें शायद जिस बारे में शायद हम सोचते नहीं है या जिस पहलू तक हमने जाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मोनिश जी स्वागत है आपका कैसे कभी में। मोनिश जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखना कब शुरू किया?

0: वर्ल्ड लिख दिया है इंसान के अंदर
1: तो जब आपकी जिंदगी में वो स्पार्क आया तो उस वक्त क्या महसूस हुआ जिसने आपको किसी और मोड़ पर या किसी और मोड़ को चूज ना करते हुए सिर्फ लिखने की ओर मोड़ा?
0: हम कलम का सहारा लेते ही इसीलिए उसे डिफाइन नहीं कह रहे होता
1: करेक्ट
0: कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो आदमी हमें मिला है, वो इंसान हमें मिला तो हम कैसा फील कर
1: रहे
0: हैं। उस चीज़ को बाइकआउट करने के लिए या बाईपास करने के लिए हम कलम उठाते हैं। शायद उन्हें यही होता है कि हम जो फील कर रहे हैं उसको नहीं बता सकते, तो जो पॉसिबल चीज़ है जो एक उस फीलिंग को टच कर सकती है उस चीज़ को आपको मुझे बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि आप भी लोगों को शायद ना पता, मुझे मालूम है कि आप भी लिखते हैं, तो उस फीलिंग को टच करने की जो सबसे ईजी या उसके सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो चीज़ जा सकती है वो शेर व शायरी है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो फील कर रहा हूँ वो तो शायद कोई ना जान पाए, शायद मुझे भी वो चीज़ एक्सप्लोर करने में टाइम लगे, या हो सकता है मैं भी कभी ना जाना, अगर हम जितना हो सकता है उतना लिखते तो निकलते ही। और आपको मालूम है कि

0: प्रेम बहुत ही पार्ट हो गया कि कभी किसी तो उसकी कोई
1: तुलना नहीं है,
0: तुलना नहीं है, कोई उसका वर्बल कोई डेफिनेशन नहीं है जो हम कर पाते हैं, लिख देते हैं कुछ।
1: तो जैसे कि आपने कहा कि

0: यही सब मेरे डैड ने अभी तक लिखा हुआ है, तो वही मुझे अभी तक फिलहाल तो वही आ रहा है कि एक ही शब्द से काम चल जाए, क्योंकि वो एक शब्द है, उसको खोलेंगे तो कम से कम 1000 किताबें आप लिख सकते हैं। मीरा जो उनकी मोहब्बत है, उनका इश्क है कृष्ण को लेके, उस मोहब्बत को अगर टटोलने जाएंगे तो ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और डायमेंशन में आ गए।
1: डायमेंशन
0: शायद इश्क का ही है,
1: और वो शायद वो डायमेंशन खुली आंखों से देखा भी नहीं जाएगा। वो
0: आशिक के लिए आशिक की बात है।
1: तो फिर मीरा को बाद में आपने पढ़ा, आपने वो एक वर्ड लिखकर

खूबसूरत एहसास रहा होगा अगर जब हम मीरा को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि मीरा का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पण था। उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ चाहिए। उनका सिर्फ यही था कि बस मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे भगवान, मेरे प्रीतम, मैं जिनसे प्रेम करती हूँ या मैं जिनके लिए पूरी समर्पित हूँ, वो बस खाली इस चीज़ को जान लूँ। लेकिन आजकल ऐसा है कि दुनिया पूरी शो ऑफ के इस चक्कर में है। मतलब प्रेम कहाँ, प्रेम प्रेम को समझती है कि शो ऑफ है। मतलब जब तक आप गिफ्ट्स ना दे दें, जब तक आप कुछ भेंट ना दे दें, कुछ दे ना दें, इसको लोग प्यार समझते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?

0: ये कैरेक्टर मुझे इतना इंस्पायर करता है कि मैंने लिखा कि सब प्यार मोहब्बत मेरा है, रखती थी चाहत मेरा है, आशिक ने लिखा सब प्रेम रखत मेरा है, सब पंछी तारे मेरा है, सब पंछी सारे मेरा है, गगन में तारे मेरा है, जो जीत गए वो कृष्ण हुए, जो हार गए, लेकिन इश्क में यही है जो हार जाता है वही जीत जाता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीरा ने हार कर जो पा लिया वो शायद लोग जीत कर भी नहीं पा सकते अपनी जिंदगी में। एक उनका डिवोशन, एक उनका समर्पण इतना गहरा लगता है मुझे कि अगर आप मीरा के पैरेलल कुछ वर्ड कहना चाहे तो क्या कहेंगे प्रेम को छोड़कर?
1: मैं कहूंगा कि जो मुझे सबसे बेहतर उनका ये लगता है, जैसे आपने कहा कि सब हार गए,
0: जो जीत गए वो कृष्ण में, जो हार गए वो मेरे,
1: किसी मतलब आपने जो लिखा शायद मैं मतलब बता दूं लोगों को कि हार गए का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जंग चल रही है, हार गए,
0: करेक्ट,
1: उन्होंने अपने सेल्फ को हरा दिया, कुछ है नहीं,
0: करेक्ट,
1: कितना बेहतर,
0: करेक्ट,
1: कोई मतलब नहीं थे, क्या है

क्योंकि देखा जाए तो सारी दुनिया उसी एक दर्शन में। तो मेरा एक सवाल था कि कभी आपने ये सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा भी होगा, एक डायमेंशन ऐसा भी होगा जहाँ शायद कृष्ण मीरा के होंगे? कभी ऐसा सोचा कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा होगा?

वो तो जब जब इश्क बढ़कर डिवोशन के लेवल पे चले जाए तभी ये सब

मैं भी बनाएंगे क्या सही सही।

0: लेकिन यही यही एक चीज है, आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ और अभी आ जाओ, पहले लोग एक्सेप्टेंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब फोर्सफुली एक्सेप्टेंस में बिलीव करने लोग लगे हैं। कि पहले एक्सेप्टेंस ये होता कि अगर कोई कह देता कि नहीं है मुझे आपके प्रति प्रेम नहीं है या मैं उस नजरिए से आपको नहीं देखता हूँ, तो लोग समझ जाते कि ठीक है आप नहीं देखते हो मैं देखता हूँ, तो वो मेरा एक तरफा मामला है आपके प्रति। लेकिन अभी लोग वैसे नहीं करते, अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
1: दुनिया में 90% शायरों का एक तरफा ही मामला होता है और ये हमेशा चलता रहेगा। एक तरफा प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसको उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, पहली बात तो मैं ये क्लियर करूँ कि जेंडर इश्क का है।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली
1: इश्क का कोई जेंडर नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम लोग जो बात करते हैं कि शायर जितने भी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं एक कांटा फंसा होता है जो गले से नहीं उतरता है किसी और के। तो ये आप कह रहे हैं, तो मैं मतलब इसका जवाब ऐसे ही देना चाहूंगा कि

कर। और ये ऐसा भी है ना कि युग युग की बात है कि ऐसा युग आना ही था जो अब हम देख रहे हैं, ऐसा युग आना है और शायद इसके बाद और एक युग आएगा जो शायद इससे बुरा होगा, है ना। तो ये सब युग आने ही वाले हैं, तो ये युग में ये होना था। तो चलो हम खुश नसीब हो कि जो पिछले युग में या उससे पिछले युग में जो हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और वो हमारे रूट्स में अभी भी है, और हम जो युग देख रहे हैं और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी युग आ सकता है। अब एक सवाल कि कोई एक ऐसी कविता जो लिखनी शुरू की, पूरी भी हुई, फिर उसे काट दिया, फिर उसे लिखा, फिर काट दिया, ऐसा कितने बार हुआ है?

0: मैं दो दो तीन तीन छह छह महीने मैंने नहीं दिखा
1: भूल गए लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस नहीं मन करता। और लिखना तभी मजा आता है कि भाई वो जब दिल से निकली चीजें, तो वो शूटिंग भी दिल से,
0: जब कुछ आप पे तारी हो रहा हो, जब आप पे कुछ
1: नाजिल
0: हो रहा हो, जब आप तो आपने कुछ मांगा नहीं और ऊपर वाले ने आपने देना भर भर भर भर भर भर भर देना शुरू किया और आप बैठे आपने यार ये आ रही आ रही आ रही हो गई पूरी कविता हो गई एक मिनट के भीतर पूरी हाँ, फिर करेक्शन फिर सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिखी गई बस उसमें करेक्शन भी नहीं करना, लेकिन फिर वो कविता का ऐसा भी मतलब होता है कि वो सुना भी नहीं पाते, फिर वो इंसान अपने एकांत में उसको पढ़ता है। जब एक कविता ऐसी लिखी जाती है हमसे कई बार कि वो हम सिर्फ एकांत में पढ़ते हैं, उसे दुनिया के लिए नहीं लिखते, मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र दिया होता है ऊपर वाले ने आपको कि आप परेशानी को पढ़ रहे हो, खुश हो तो पढ़ रहे हो, कुछ मिला है तो पढ़ रहे हो, कुछ हुआ

0: क्रूज शिप और हाँ वो मतलब सुना ही नहीं सकते किसी को,
1: वो बोलते हैं वो फिर उसमें कई बाउंड्रीज भी टूट गई हैं, कई चीजें भी टूट गई हैं, शायद जो नियम है कानून है वो भी टूटते हैं, तो इसलिए वो जहाँ है वही रहे ज्यादा।
0: कभी कभी ऐसा कुछ लिखा और बाद में खुद की पीठ थपथपाई जाती है, अरे क्या लिख दिया मैंने,
1: एक शेर लिखा था और
2: अच्छा
1: शायद उर्दू में है, लोगों को पता नहीं कैसे लगे, मगर रिकॉर्ड हो जाए आपको मालूम है वाला शेर मैंने आपको।

0: बातों से ये समझो कि समझो कि नदी बह रही है, लेकिन सब हाथ धो रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बस ऐसे बैठ के ना नदी को देख रहे हैं। बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखते देखते में भी कुछ लोग वो पा लेते हैं जो शायद नदी का पानी पी के ना पाए। हाँ, तो मैं आप जब ये शेयर कह रहे थे और जब आप इसका प्रीफेस बता रहे थे, चीजें बता रहे थे, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, एक नदी बह रही है और पूरा गांव उमड़ा है उसका पानी पीने के लिए, लेकिन मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा
1: हूँ कि
0: मतलब क्या पानी ऐसा बह रहा है, लोग पानी पी रहे हैं। अगर पीने से इन लोग इतने खुश है तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ।

0: यही तो प्रेम है कि एक एक आशिक जो है, एक आशिक जो परेशान कि मैं क्या करूँ, एक बार वो देख ले उसने कुछ नहीं पूछे
1: यार का
0: हाल कुछ था। हाँ हाँ हाँ मैंने भी एक शेर लिखा था। मैं ऐसा बैठा हुआ था, मुझे मेरे गुरुजी ने देखा, देखे और मुस्कुराया। तो मैंने देखा

0: तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा अंदर हाँ, तो ऐसे उतर गया मेरे अंदर मिला हाँ, वो मोमेंट था मेरे लिए कि क्या क्या हो गया यहाँ पे। मतलब इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है ना कि एक बार उत्तर वाला देख ले उसे, है ना, है ना। तो वही तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें कि आपने लिखा रात में, उसको बहुत मतलब पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा और सुबह उठ के वो पेज को फाड़ के फेंक दिया। तो वो जर्नी जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब रात में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मतलब अरे यार क्या लिख दिया मैं, और मन ही मन सोच रहे कि सुबह इसको सुनाना है लोगों को, और मतलब सिर्फ तारीफें लूटनी है, और सुबह हुई तो वो पन्ने को फाड़ के फेंक दिया।
1: ऐसा होता है
0: हाँ,
1: और इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आशिक का मिजाज चेंज ना हो तो वो आशिक नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: क्योंकि इश्क जो है हमें लगता

0: एक दूसरे को टोकते एक दूसरे को देते हैं, यश जिस चीज में आप बेटर हैं आप ग्रो करें, जिस चीज में मैं बेटर हूँ मैं ग्रो करें, ये प्रॉपर मेरे हिसाब से यश की डेफिनेशन है। तो हम जो लिखते हैं वो उस स्टेज पे लिखते हैं, रात भर में या दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं, तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया। नहीं, वो पुराना नहीं, वो किसी बंदे की है आज भी जो तुम्हारी स्टेज पे जो तुम कल
1: हाँ, ना, करेक्ट करेक्ट
0: करेक्ट, कोई और इंसान रखे जो पढ़ेगा मजा आएगा।
1: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
0: मैंने बोला कि रास्ता दरवाजा भी है, इश्क का दरवाजा एक है, उसको वहां

0: यही दुनिया को यही तो टटोलना है कि दीवार के उस पार क्या है, तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज़मों से याद आया बुल्ले शाह साहब। बुल्ले शाह साहब का कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो।
1: बुल्ले शाह साहब का मुझे एक किस्सा याद आता है उनका, कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वाला देखें, जात और बिरादरी वाली, तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को समझ लगा अपनी बात समझा पाऊँ तो इस तरीके से करूँगा कि समझ लीजिए
0: सब्जी बेचने वाले थे मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब।
1: बुल्ले शाह जो मुसलमान सैयद है, तो वो तो एक दिन खाना खा रहे तो बुल्ले शाह के घर वालों ने कह दिया कि क्या रे सब्जी बेचने वाले से कचेला बन गया, उसके बाद क्या रखा। तो बुल्ले शाह की के मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी भी दिया सपना ही तो है। तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था, जो उनका जो उनका सेक्रीफाइस था, जो जो था उनका जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी, सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा, और वो परेशान हो गए। तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरु जी की गलियों से निकलते थे, सब चीज़ करते थे। यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहाँ से उनके गुरु जी कभी कदार निकलते, तो वहाँ पे कोठे में चले गए वो। तो वहाँ पे जो कवायद थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूँ, तो बोले पागल वागल कैसे सब आप नाचेंगे, आप मतलब इतने बड़े मौलवी आप आलिम में मौलाना आप नाचेंगे। बोले नहीं आज मेरा महबूब हंसने के लिए मैं नाचूंगा। पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गए और इत्तेफाक से वो निकले भी नहीं। इतना इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे जो गुस्ल खाना होता है, जो वॉशरूम होता है आज आज जो जहाँ पे आदमी
0: नहाता
1: है, तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना पाइप वाइप का, तो जहाँ पे नहा रहे थे उनको गुरु जी, वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था वहाँ पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिए, तो पानी वॉशरूम में भरने लगा। तो उनके गुरु जी बांस लिए बांबू और बांबू से पाइप को साफ करने लगे, तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस, पूरा सब फट गया। जब देखे खून आने लगा तो गुरु जी और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक थे और गुरु, तो तब वो गए और दोबारा देखते हैं कि अरे बुल्ला ये तो तू है।
0: वो तो उनकी गुरु जी के चौखट पर सर तोड़ दिए खुद का, क्या क्या नहीं किया।
1: आप सोचिए जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ बांबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका, तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मेरी जो है प्राशी, अब प्राशी मेरा पूरा हुआ। वो तो ज्यादा नहीं ना मुझे मैं मतलब किसी बहाने ना जाऊँ, किसी बहाने किसी रास्ते
0: क्या इस तरह क्या समर्पण होगा। मतलब ऐसे ऐसे मतलब शिष्य और गुरु की कहानी जैसे एकलव्य की कहानी है, उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था, धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगूठा भाई।
1: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की राधा कृष्ण मीरा कृष्ण लक्ष्मण का राम के प्रति
0: प्रेम समर्पण था, जो प्रेम था
1: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में बात कर सकते हैं, कुछ कुछ किस लेवल पे है, कुछ किसी लेवल पे है, कुछ किसी लेवल।
0: हाँ मतलब चीजें इतनी सारी है, लेकिन मेन मसला मेन जो मामला जहाँ बिगड़ता है कि आजकल के यूथ को ये चीजें इन चीजों का अभाव हो गया, ये चीजें मिल नहीं रही है। ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, जिसे आप चले गए आपने पढ़ लिया आपको समझ में आ गया, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है, जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते। आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने, अपने रूट्स को पढ़े, अपने रूट्स को जाने, तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुरानी युग में ले जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई, हमने जाना मीरा का समर्पण, बुल्ले शाह साहब का समर्पण, सबका समर्पण, आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया, उस वक्त दिल में जो एक टीस पैदा होती है, जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया कि मैंने
1: लिखा नहीं है, मैंने पैर छुए, मैंने पैर छुए, और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन के अराउंड लोग हैं, और कोई एक इंसान, मर्द में औरत में, कोई भी एक इंसान आपको पसंद करता है दुनिया में, तो इतनी सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आप कर रही है या कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितने आप कितने खुशकिस्मत हैं।

0: तो इन्होंने तो मुझसे तो पूछे कोई पैर छूने के
1: काम
0: कि ए इंसान तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और
1: मतलब
0: अपना मेरा ध्यान कहीं। तो ये पैर छूने वाली बात है, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल था आपने कुछ लिखा।
1: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
0: एक गाना समझ में आता है मुझे,
1: तो थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो। जब आप मौजूद होते तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
0: इसका धुन कैसे गाने का?
1: आपकी नजरों ने समझा प्यार के मुझे।

क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक, वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के रेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आप वो गुनगुनाएं

0: मतलब देखो ऊपर वाले की महिमा भी देखो, एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना पीना है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म कर रहा है, क्या कुछ नहीं।
1: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है,
0: ये ब्लॉक नहीं,
1: उसके अलावा बात करें, हाँ, हाँ, हाँ, क्लैरिफिकेशन दे दी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे शकील भाई, कि नहीं नहीं लिखने का मन नहीं करना ये अलग बात है, नहीं लिखने का ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखने हो रहा है कई कई सारी चीजें। नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान, शिकायतें ज्यादा हो जाती है, उससे शिकायतें ज्यादा हो जाती है, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये है कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब की आप बुराई नहीं कर सकते, आप या तो इश्क करें या तो फिर बुराई करें,
0: दोनों नहीं कर सकते।
1: अरे तो एक एक जगह पे दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट,
0: एक मैदान में दो तलवार नहीं है,
1: दो तलवार
0: सही बात,
1: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिन में दो चीज कैसे रहेंगे।
0: नहीं लेकिन एक मोड़ आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में, तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है, फिर उससे प्यार हो गया, नहीं वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाए हुए फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में, एक

0: तेरे दिल की दीवार
1: और कभी भला हो असरार
0: ये बड़ी बात है जो समझ
1: वाह वाह
0: इतनी ऊंची ऊंची दीवार है इस में खड़ी करके कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते इस मिजाज में इस मिजाज में आपकी फ्रीडम की बात कर रहे हैं मगर ये भी होता है कि कितनी भी नफरत कर लें मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से वो एक मंजिला घर इश्क में रहना
1: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा इधर
0: कभी गुस्सा
1: तो वही मतलब चार दीवारें बना रही है गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार है तो उसको ही चूम रहे क्या एक राइटर मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है जैसे एक शायर थे मजाज साहब की जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का उसमें वो प्रोफेसर थे बहुत बड़े प्रोफेसर उर्दू के प्रोफेसर उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया और अब वो प्रोफेसर माने नहीं तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे लेकिन कैसी शायरी ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा वो इतने टूट गए प्रेम में इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको पूरी रात बैठ के शायरी सुनी तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं पैसे खत्म हो गए पैसे ही नहीं अब कोई आदमी क्या कर रहा है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है मजाज मिल गया मजाज को बुला लिया बिठा दिया थोड़ी चाय पिला दी चलो सुनाओ अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको दिल्ली में एकदम कड़ाके की सर्दी एकदम खतरनाक था जहाँ पर मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कपकपा जाओ एकदम से कड़क हो जाओ पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई शायरी सुनी और रात के लगभग 2-2:30 बजे उनको छोड़ के रस्ते पे चले गए वो शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि सुबह पता चला कि मजाज नहीं रहे दुनिया में ऐसा वक्त आया तो क्या शायर किसी से प्यार करते करते मर जाता है हाँ ये शायद हमारे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या मरने के बाद भी शायर उसी शख्स को दूसरी दुनिया से भी चाहता होगा
0: जो मतलब जो इस दुनिया में किसी को नहीं पा सकता मैं वो वहाँ पर नहीं पा सकता और पाने की जो बात है ये बहुत ही मैंने आपको बताया ना कि यूनियन यही होना है हम मतलब अगर ये जरूरी ना होता ये फेज जरूरी ना होता तो हम पैदा नहीं किया जाता
1: ओके
0: वही हमको मिला गया ना जब वहाँ पे दो आत्माएं की नहीं मिल रहे थे क्या दिक्कत थी मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है अगर आप इश्क कर देते हैं तो वो अधूरा हो जाएगा।

0: इश्क की कई
1: कैटेगरी
0: कई कैटेगरी है, जैसे आदमी करते करते करते करते करते करते इंसान को ना इंसान को इंसान की जरूरत रही जाती है। मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए, तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं। और इसी दुनिया में अभी पा लिया मीरा ने, इसी दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले। ऐसा नहीं मिला कि कोई उनको बॉयफ्रेंड लेके से कहे।
1: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं।
0: अल्टीमेट गोल जो है वो मैं मतलब एट दी एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की भाव में, मतलब हमारे मालिक की भाव में। अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूँ इश्क का, अगर मेरे से कोई पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई दुनिया बनी है शब्द मोहब्बत से, दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए, मोहब्बत करने के लिए बनी है। जितना हो सके लोगों से मैं कहता हूँ प्यार करिए, अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपने एसी को

0: समझ नहीं है।
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक, करेक, करेक।
0: तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है वो यूनियन का ही एक समग्र स्वरूप है। अगर हम आज कुछ अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है। हमें मिलना ही है, हमें यूनियन ही है। तो जो मरने के बाद जो अपनी करेगी वो यही मिल जाते हैं, चाहे आखिरी सांस में मिलाए मालिक को। मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले, वो मालिक बहुत ही बहुत रहने वाला है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुम नहीं करते, मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
1: हाँ वो तो सही बात है, वो तो सही बात है।
0: यही जवाब है मेरा।
1: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं। एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते?
0: लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कहीं कहीं मजदूरी मजदूरी कर लेते। मगर ये कुछ चीजें, जैसे अब मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ। मेरे सारे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है। मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
1: कुछ नहीं करता तो इश्क करता है,
0: कुछ नहीं करता तो शायद फिर इश्क, और कुछ नहीं करता मुझे ये ही सूट करता है, मैं वही करता हूँ, मैं उसमें ज्यादा माहिर हूँ।
1: अच्छा,
0: और सबको मैं सबको मतलब सबको सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने इन्वायरमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार बांटो यार।
1: इश्क करें, प्यार करें, इसका मतलब यह नहीं जाके जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन, मोर ह्यूमन, मोर गेट्स बेंड टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, या देन एनीथिंग गेट्स बेंड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, जस्ट गेट क्लोजर टू, जस्ट बी द प्योर सोल हु कैन हेल्प, बी काइंड, बी पॉजिटिव। आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव।
0: मैं यही बताता हूं कि जब जो हम जो we have been created for love, हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया। शबीर भाई, आप एक जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना प्यार नहीं तो क्या है। मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार, इश्क इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले, मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना हो फिर खूबसूरत लगता है,
1: इससे अच्छी क्या ही एम हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसके स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जांपल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन, अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी मच लवेबल, दैट योर लव शुड गेट स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, इट शुड नॉट गेट बाउंडेड। ये बाउंड नहीं रहना चाहिए, या आप इसको क्लोज फॉर्म में ना रखें। इफ यू हैव समथिंग टू गिव, प्लीज गिव इट बैक, आप दो, क्योंकि आपने थोड़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा फॉर्म में बन के आपके पास ही लौटेगा। लेकिन जब आप एक इंसान तभी अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है जब वो अपने अंदर की चीजों को खाली करता है। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते।
0: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें अब्सॉर्ब करिए, प्यार ऐसी चीज है कि आपको एक्सपीरियंस करते रहना है। ठहरा हुआ पानी सब बहुत जल्द जेल से बाहर
1: होगा, ठहरे हुए पानी में कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नए कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय।
2: थैंक यू सर।
3: आई जस्ट डोंट गेट यू आर्यो। जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी, फिर भी तुम इतने खुश हो।
4: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा। मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत में उतरने हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। हमें मिलना है, हम देखते हैं एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे।

को शेयर करना, यही मेरा इरादा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक खास रेसिपी, जो बनाने के लिए हमें चाहिए आम। भाई आम का मौसम चल रहा है तो मैंगो फूड सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अमृत जैसी टेस्ट वाला आम इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी जिंदगी। महाराष्ट्रीयन लोगों को वरण फड़े दाल ढोकली तो पता ही होगा। मसालेदार दाल में आटे के पतले टुकड़े डालकर हम वरण फड़े बनाते हैं। लेकिन अंबेची अमृत फड़े ये लजीज खाना बिना ग्रेवी वाला है। इसे खुशबूदार अंबा मोहर चावल के साथ पकाकर इसी शेप में काटा जाता है। अब अंबा मोहर चावल को जानते हैं ना? अंबा मोहर चावल महाराष्ट्र का पारंपरिक और छोटे दाने वाला चावल है।

चावल का दाना आकार में बड़ा होता है और अम्बा मोहर चावल का दाना छोटे साइज का होता है। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी की ओर अब हम बढ़ते हैं। आंब्याची अमृत फळे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। अम्बा मोहर चावल एक कटोरी, पके हुए अल्फोंसो मीन्स हापुस आम दो, पानी एक कटोरी, देसी घी लगभग आधा कटोरी, कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल चार चम्मच, केसर के धागे सात या आठ, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, सॉल्ट पाउडर पाँच चम्मच, खसखस मीन्स पॉपी सीड्स एक चम्मच, और हमें चाहिए ढेर सारा प्याज, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने ही वाली है। अब हम आंब्याची अमृत फळे बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पके हुए हापुस आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग एक घंटे तक हमें इसे पानी में भिगोकर रखना है। ऐसा क्यों करना है, भूल गए आप? जनाब, आम की तासीर गर्म होती है। पानी में रखने से आम में से गर्मी निकल जाती है और ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और बात, क्या आप सौंठ का मतलब जानते हैं? सौंठ मीन्स सूखा अदरक। सूखा अदरक पीस कर बनता है सौंठ पाउडर।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सिंह। अब हम आंब्याची अमृत फळे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप चावल को अच्छे से धो लीजिए। अब हमें इन चावलों को सुखाना है। इसके लिए कॉटन के एक कपड़े पर इसे फैला कर रखिए। लगभग 2-4 घंटे के बाद इसका पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर इसे मिक्सर में डालकर इसका रवा बनाइए। उसके बाद मोटे बेस वाली एक कढ़ाई में हमें गरम करना है घी। यहाँ पर मैं 1/2 कटोरी घी को गरम कर रही हूँ। फिर उस गरम घी में हम डालेंगे मिक्सर में बनाया हुआ आंबा मोहर चावल का रवा। लगभग 10 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को आप लो ही रखिए। ऐसा करने से ये रवा गोल्डन कलर का होगा, नहीं तो वो जल सकता है और किचन में धुआंधार परफॉर्मेंस वाला सीन क्रिएट हो सकता है।

मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और ताज़ा आमरस। फिर ऐड कीजिए ढेर सारा प्याज। इसे आप अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। फिर बारी आती है शक्कर, केसर और थोड़ी सी सॉल्ट पाउडर। इसे भी उस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 2-4 मिनट में ये पक जाएगा। फिर इसमें डालिए थोड़ा सा और घी और साथ ही खुशबूदार इलायची पाउडर। इस देसी घी और इलायची पाउडर की खुशबू से आपका घर महक उठेगा। क्या बात! अब इस कढ़ाई पर ढक्कन रखकर लगभग 2-3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। जब तक ये पक रहा है हम एक ब्रेक लेते हैं। हमारी अम्बिया जी अमृत पोए अब फाइनल टच के लिए है तैयार। और इसे खाने के लिए हम कैसे करें और इंतजार? तो भाई अब आगे सुनिए। सूजी का हलवा मींस शीरे जैसे ये कढ़ाई वाला मिश्रण दिखने लगे तब आप गैस को कर दीजिए बंद। अब एक बड़ी सी प्लेट में इस मिश्रण को हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन पहले उस प्लेट पर थोड़ा सा घी सब तरफ अच्छे से फैलाइए। फिर कढ़ाई में तैयार मिश्रण को उस घी वाली प्लेट में निकालिए। इस गर्मा गर्म मिश्रण को एक कटोरी के बेस की मदद से अच्छे से चपटा करके फैला देना। जब तक ये मिश्रण गर्म है तब ही इस पर खसखस और ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट को फैला दीजिए। बाद में कटोरी के बेस से इसे भी प्रेस कर दीजिए। लगभग 1 घंटे के बाद इस तैयार मिश्रण को छुरी की मदद से स्क्वायर शेप में काटिए। इस प्रकार अम्ब्याची अमृत फळे अब खाने के लिए है एकदम तैयार। एक सुंदर सी कटोरी में रखकर इस अम्ब्याची अमृत फळे का भोग आप भगवान को लगाइए। ऐसा करने से खाने की सात्विकता बढ़ जाएगी। अब इसका एक टुकड़ा उठाकर बड़े आनंद से इसका लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारती सीमा। इस अम्ब्याची अमृत फळे की तारीख में पेश है एक छोटी सी कविता का नाम है प्रस्तुत हुआ अमृत। न्यारी सी एक मिठाई नाम में जिसके अमृत आमरस और चावल से बखूबी किया प्रस्तुत। आम से बने व्यंजनों की इस शो में भरमार स्वाद का जायका निभाने आई भारतीय सीमा बनकर कर्णधार। हम खाना खिलाते खिलाते

और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारती सिन्हा। वैसे गर्मी के सीजन में एक और फल मार्केट में आता है। इस फल के बीज निकालकर उसे नमक लगाकर धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। ऐसा सुखाने से लाल रंग वाला ये खट्टा फल काले रंग का बन जाता है। इसे मेनली महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। सूखे हुए फल में नारियल का दूध मिलाकर बनाई जाती है कोकम कड़ी, मींस सोल कड़ी। ये ताजगी भरा व्यंजन है। ये अपने खट्टे मीठे और पाचक गुणों के लिए फेमस है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होने के साथ हल्का मसालेदार भी होता है। इसका रंग हल्का गुलाबी या जामुनी होता है, जो कोकम से नेचुरली आता है।

खाने में ये बहुत ही प्रभावी मीन्स असरदार है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ को फायदा ही मिलता है। मीन्स अपनी ब्यूटी रेजिम में आप कोकम कड़ी को जरूर शामिल कीजिए। मैं हूं आरजे भारती सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। कोकम कड़ी को सिंपल चावल के साथ खाना मतलब कंफर्ट फूड खाने वाली बात। स्टे

सिंक की हलिया 3-4 ये ऑप्शनल है। जीरा एक छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। अब तड़का लगाने की सामग्री को जानते हैं। हमें चाहिए तेल या देसी घी लगभग 1 चम्मच, राई मतलब सरसों 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, कड़ी पत्ता 8 से 10 पत्ते। गार्निश करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम कोकम कड़ी या सोल कड़ी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले सूखे कोकम को 1/2 कटोरी गर्म पानी में भिगोकर रखें। लगभग 1/2 घंटे बाद कोकम का टेक्सचर सॉफ्ट बनेगा। तब उसी पानी में कोकम को अपने हाथों से मसल दीजिए, मींस क्रश कीजिए। ऐसा करते समय उसके बीज आप हटा दीजिए। अब हम नारियल का दूध बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। मिक्सर के जार में कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें। इसमें हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और लहसुन ऐड कीजिए। फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसे पीस लीजिए। अब इस पीसे हुए मिश्रण को महीन छलनी में डालें। छोटे छेद वाली छलनी से सॉलिड और लिक्विड पार्ट को अलग अलग कर दीजिए। सॉलिड वाले पेस्ट को अपने हाथों से निचोड़कर हमें नारियल का गाढ़ा सा दूध और जो लिक्विड वाला भी चाहिए। टेस्टी सोनपुरी को एंजॉय करने थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब इस नारियल के दूध में मसल कर बनाया हुआ कोकम और उसका पानी दूध को अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें मिलाइए थोड़ा सा नमक। अब इस गुलाबी मिश्रण को हम खुशबूदार तड़का लगाकर स्वाद का जायका निभाने वाले हैं। इसके लिए एक छोटे से पैन में थोड़ा तेल या घी गरम कीजिए। उसमें सबसे पहले डालिए सरसों, राई, मस्टर्ड सीड्स।

गुलाबी कोकम कड़ी को सुंदर से एक कांच के ग्लास में परोसिए। फिर इसकी सुर्खी को सजाने के लिए इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए।

2019 इस सोल भरी की तारीख में पेश है एक कविता। कविता का नाम है सोल

ऑडियंस जी पूरी करेंगे आपकी विश। देसी खाना खाकर पर्व, भारत की तरक्की का अब शुरू हुआ है पर्व। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी है तो हमें जरूर बताइए, हमसे साझा कीजिए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य

चाहती थी कि भगवान श्री राम को

0: रहा है जी।
1: तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या। वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं।

थैंक यू इंट्रोड्यूस करने के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि बुलिंग शब्द सुन के हमें हमेशा ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज होती है, दिखने में बहुत बड़ी होती है. वैसे तो वो बड़ी है, बट वो कभी कभी दिखने में उतनी बड़ी नहीं होती. जैसे हमने देखा है मुन्ना भाई MBBS देखा है, उसमें कैसे हमें रैगिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वैसा होता है तो उसको ही हम

कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बुलिंग मतलब क्या है, एक छोटा सा चिढ़ाना हो गया, वो एक बैड मेमोरी है शायद किसी के लिए, बट ये कभी भी ना सिर्फ बैड मेमोरी नहीं रहती है, वो दिल पे लगता है. और जैसे मैंने बोला कि जब वो बार बार होते रहता है तो उसका बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे, किसी के भी मेंटल हेल्थ पे हो सकता है. एंग्जाइटी होना, बहुत ज्यादा सोचते रहना, इतना सोचना, अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज करना, अपनी आइडेंटिटी को जिस तरीके से लोग हमें उभारते हैं उस तरीके से बनाना. अगर कोई किसी को यार तू तो बहुत पतला है बोलते रहेगा,

भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, उनसे बात करो। आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपका कोई कजिन हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास ही आना है, आप किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में बात जरूर करो। आपका जो इमोशनल एक आपको लोड फील होता है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा कम होने में उससे मदद हो सकती है। तीसरी जो चीज है, अगर आप आपके साथ होने वाले बुलिंग को डॉक्यूमेंट करते हो, उसको लिख के रखते हो कि ये कब हुआ था, कौन से डेट पे हुआ था, किसने किया था, सिचुएशन क्या था, तो अगर आप कभी आगे जाके कंप्लेन करना चाहते हो, इसमें ये चीज बहुत काम आती है कि आप उसको कंप्लेन भी आगे दे सकते हो।

0: इंसान पे नहीं होना चाहिए जो बुली
1: सुर में गाना सीखिए बादामी सा ऐप के साथ एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारे
0: एनवायरनमेंट हमें तैयार करनी है कि जहां हम सब एक दूसरे का सपोर्ट कर सकें। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं कि हम किसी का सपोर्ट करें जो बुली हो रहा है, हम उसको कैसे सपोर्ट करें। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं तो एक इंसान हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, और यही जो सोच है वो हमें कुछ करने से रोकती है। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि बहुत बड़ा स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप छोटा सा भी स्टेप लेते हो तो वो भी एक सपोर्ट के तरीके से एक इंसान के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो जब बुलिंग हो रहा है तब जाके झगड़ा करना, इतने बड़े स्टेप्स लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि बस अगर कोई बुली हो रहा है तो बाद में जाके उनको उनसे बात करना, उनको बताना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं हुआ। इतनी चीजें सिर्फ उनको बताना और उनको ये महसूस कराना कि उनके साथ भी कोई है जो उनको सपोर्ट करता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। प्राइवेटली उनके साथ जाके एक बार चेकिंग करना कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, मैं कुछ कर सकती हूँ, ये चीजें पूछ।

ਨੂੰ ਆਨ

दुकान जाके बैठना, उनको इग्नोर कोई और आगे उनको बुली करना शुरू करे, उसके पहले ही हम जाके उनको इंक्लूडेड फील करा सकते हैं। तीसरा है कि कोई अगर अपने आप को सबके सामने लाके कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, किसी चीज में भाग ले रहा है, तो उनको अप्रिशिएट करना, वो भी एक बहुत, हमें लगता है कि वो ये कौन करता है ऐसे, पर वो करना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है उस इंसान के लिए। किसी को कोई पढ़ाई का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उनको वो समझाना, ऐसे छोटे छोटे

केला की माझं पहिले थोडं नाही बसत नाही. माझं एक एक

ಕಾಂಚಾಪಂಥಾತ್ ಕುಂದ ಮೋಹರತೆ ಮನ ಉಧಾನವಾರ್ಯಾ ಗೋಚಪ

0: ये कतरांगस
1: कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस कतरांगस

तर महिन्यात ते एका रेवर

Yeah.

0: म्हणतो अरे किती बरं वाटलं तुला भेटून.
1: पॉझिटिव्ह आहे.

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की मदद। कहानियाँ जो हमें जिंदगी में ऐसे सबक सिखा जाती है जो शायद हम स्कूल में नहीं सीख पाते, अपने पेरेंट्स से नहीं सीख पाते, अपने दोस्तों से नहीं सीख पाते। इसलिए तो जिंदगी में कहानियों का बहुत मतलब है। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उनमें कुछ ऐसी कहानियाँ होती है जो हमें जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ पर हमारी मदद करती है जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसी एक कहानी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये कहानी का नाम है एक अधूरी सी चाय। मुंबई कभी रुकती नहीं। सुबह के 8 बजे ही रोड्स पर इतनी भीड़ होती थी जैसे पूरा शहर किसी रेस में भाग रहा हो। लोकल ट्रेन्स के दरवाजों से लटके लोग, सिग्नल पर हॉर्न्स के नॉइज, रोड साइड वेंडर्स की आवाजें और उन सब के बीच एक और इंसान था जो रोज की तरह अपनी लाइफ को धक्का दे रहा है। धीरज शर्मा, 29 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, लोअर पवेल के एक बड़े ग्लास बिल्डिंग वाले ऑफिस में सीनियर डेटा एनालिस्ट। पैकेज अच्छा था, पोजीशन भी अच्छी, पेरेंट्स प्राउड थे, लिंक्डइन प्रोफाइल इम्प्रेसिव था, पर अंदर से धीरज थक चुका था। उसकी लाइफ एक्सेल शीट्स और डेडलाइंस में उलझ गई थी। हर दिन से सुबह ऑफिस, लैपटॉप, मीटिंग्स, टारगेट्स, लेट नाइट मेल्स, फिर घर जाके थोड़ी देर में मोबाइल स्क्रॉल करना और बिना कुछ फील किए सो जाना। कभी कभी उससे लगता जैसे वो इंसान नहीं मशीन बन गया हो। उसके दिन की सिर्फ एक ही चीज स्पेशल होती थी, 11:15 बजे वाली चाय। ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटी सी चाय की टपरी थी, नाम था टीएच। कॉर्पोरेट इम्प्लॉयज के लिए वो टपरी ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी थी। कोई स्ट्रेस लेकर आता था, कोई गॉसिप, कोई सिगरेट और कोई बस 10 मिनट की शादी। टी अड्डा का ऑनर श्यामलाल धीरज को रोज देखकर बिना पूछे ही चाय बना देता। एक्स्ट्रा अदरक वाली, बिना ज्यादा चीनी। सही कहा ना धीरज भैया? हाँ। धीरज कप लेकर साइड में खड़ा हो जाता और बिल्डिंग के बाहर रश देखता है। उसे लोग ऑब्जर्व करना पसंद है, कौन खुश है, कौन फेक स्माइल कर रहा है, कौन अंदर से टूट चुका है। कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स इंसान को एक्टिंग सिखाई देती है। और फिर एक दिन सब बदल गया। उस दिन मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी, रोड हाफ फ्लडेड, कैब ड्राइवर्स कैंसिल पे कैंसिल कर रहे, एम्प्लॉयज भीगते हुए ऑफिस एंटर कर रहे। धीरज यूजुअल टाइमिंग पर

हाथ में लैपटॉप बैग बालों से टपक रहा था और चेहरे पर वो एक्सप्रेशन जो सिर्फ लेट होने वाले एम्प्लॉयज के होते। वो डायरेक्टली चाय स्टॉल पर आई, भैया एक कटिंग चाय प्लीज। उसकी आवाज सॉफ्ट, बिल्कुल अननेसेसरी लाउड। धीरज ने बस कैजुअली उसकी तरफ देखा पर पता नहीं कि उसकी नजर वापस हट ही नहीं कर। शायद उसकी आंखें या उसका कामनेस या वो अजीब सी सैडनेस जो उसके चेहरे के पीछे छुपी हुई थी। लड़की ने चाय कप लिप्स तक ले गई और तभी उसकी नजर धीरज से पड़ी। सिर्फ 2 सेकंड्स पर धीरज को जेन्युइनली लगा जैसे आसपास का सारा नॉइज म्यूट हो गया। ना हॉर्न सुनाई दिए, ना लोग, ना बारिश, बस वो आ गई। फिर उसने क्वाइटली नजर हटा ली और बिना कुछ बोले बिल्डिंग के अंदर चली गई। धीरज उसे जाते हुए देखता रह गया। कौन सी कंपनी में होती, उसने खुद से पूछा। फिर तुरंत अपने पास हंस दिया। क्या कह रहे हैं? पर उस दिन के बाद उसका वो 11:15 सिर्फ चाय नहीं कुछ और बन चुका। नेक्स्ट डे 11:12 लग रहा है ना बिग बॉस जैसा, पर ठीक में से धीरज यूजुअली 3 मिनट पहले ही टी अड्डे पर। खुद को रीजन दिया, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, पर अंदर से वो जानता है वो उसे देखना चाहता है। 11:15 और वो आ गई, सेम काम फेस, आज ब्लू करते हैं। उसने चाय ऑर्डर की, 1 सेकंड के लिए धीरज की तरफ देखा, फिर कप लेकर साइड में खड़ी हुई। आज भी कोई बात नहीं, बस एक ऑकवर्ड आई। फिर अगले दिन, फिर उसके अगले स्लोली वो दोनों एक दूसरे के रूटीन का पार्ट बने। कभी धीरज पहले आता, कभी दोनों एक साथ काउंटर पे हाथ बढ़ाते हुए ऑकवर्डली ओ सॉरी कह देते। एक दिन चाय वाले श्यामलाल ने पीस कर दिया, आप दोनों सेम ऑफिस में हो क्या? दोनों एक साथ बोले,

क्योंकि उस स्माइल ने धीरज के अंदर कुछ स्टार्ट कर दिया था और धीरज अननोइंगली उसे ऑब्जर्व करने लगा था। वो लाउड लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती थी, कभी फोन पर अननेसेसरी बातें नहीं करती थी, कभी किसी ग्रुप में गॉसिप करके नहीं दिखती थी। और एक स्ट्रेंज चीज, उसकी आंखों में हमेशा हल्का सा दर्द होता था, जैसे वो फिजिकली मुंबई में हो पर मेंटली कहीं हो। एक दिन धीरज मीटिंग में था, बॉस कुछ एक्सप्लेन कर रहा था पर उसका फोकस लैपटॉप स्क्रीन पर नहीं था, उसकी नजर बार बार वॉच पर जा रही थी। 11:13, 11:14, 11:15, 11:16 फाइनली उसने एक्सक्यूज मारा, सर वॉशरूम, और डायरेक्टली थिएटर तक भाग गया। वो ऑलरेडी वहां खड़ी थी, उसने कैजुअली बोला, आज लेट हो?

धीरज भैया जाके अनयूजुअली हैप्पी था, मैंने भी नोटिस कर लिया। क्या बात है, आज मूड अच्छा लग रहा है। बस ऑफिस का स्ट्रेस कम था, तो स्ट्रेस कम नहीं हुआ था। बस उसकी लाइफ में पहली बार कोई इंटरेस्टिंग चीज हुई और उस इंटरेस्टिंग चीज का नाम था वो अननोन चाय वगैरह, जिसका नाम अभी तक उसे पता नहीं, लेकिन उसे ये बिल्कुल पता था कि ये 11:30 वाली चाय उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। तो दोस्तों, देखा हमने कि किस तरीके से 11:15 वाली चाय जो धीरज की जिंदगी में एक अपना अलग मुकाम बना चुकी है, और कैसे दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें हुई।

0: स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे धीरज की कहानी चाय वाली, एक अधूरी सी चाय, एक अधूरी सी मोहब्बत। देखते हैं,
1: मुंबई की बारिश और कॉर्पोरेट लाइफ में एक सिमिलैरिटी होती है, दोनों कब स्टार्ट हो जाए और कब रुक जाए कोई गारंटी नहीं। उस दिन भी वेदर डिपार्टमेंट ने लाइट शॉवर्स बोला था और रियलिटी में लोअर बैरल ऑलमोस्ट डूब चुका था। ऑफिस के बाहर एम्प्लॉयज

भैया एक गरम चाय जल्दी। धीरज के लिप पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई, पता नहीं क्यों उसे उसका आना अच्छा लगने लगा था, शायद बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। रिद्धि चाय लेकर साइड में खड़ी हुई थी कि थंडर हुआ, वो हल्के से डर गई।

नीरज इंटरव्यू में 10 मिनट से बैटल कर रहा था कि ऑफर कर दूं कि कहाँ ड्रॉप करो। फिर मन ही मन सोचने लगा, नहीं ऑकवर्ड लगेगा। फिर अंदर से तीसरे धीरज ने बोला, अबे कर दे। फिर चौथे धीरज ने

0: नीरज ने फाइनली बोला, वैसे नाम तो बता सकती हो। वो हल्की सी मुस्कुराई। रिद्धि, नाइस नेम। तुम्हारा? धीरज। तुम्हारा नाम जैसा पेशेंस है, क्या तुम वैसे हो? बिल्कुल नहीं। रिद्धि हंस पड़ी और उस मोमेंट पर धीरज ऑफिशियली गया, दिल से, कंप्लीटली। मेट्रो स्टेशन आ गया, रिद्धि रुक गई। थैंक्स, वरना मैं तो आज डूब ही जाती। एनी टाइम, धीरज रिप्लाइड। वो मुड़कर अंदर जाने लगी, फिर सडनली रुककर बोली, कल 11:15 बजे? धीरज स्माइल के बिना रह नहीं पाया। पक्की बात, और उस रात पहली बार बहुत टाइम बाद धीरज जेन्युइनली हैप्पी सोया। अब 11:30 सिर्फ चाय ब्रेक नहीं रहा, वो उन दोनों का अनऑफिशियल मीटिंग टाइम बन चुका था। कभी कटिंग चाय, कभी समोसा स्प्लिट करना, कभी ऑफिस गॉसिप, कभी रैंडम लाइफ टॉक्स। धीरज को स्लोली रियलाइज हुआ, रिद्धि बाकी लोगों जैसी नहीं थी। वो अननेसेसरली लाउड नहीं थी, फेक नहीं थी, और सबसे अलग चीज, वो सुनना जानती थी। आजकल लोग रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, पर रिद्धि समझने के लिए सुनती थी। एक दिन धीरज ऑफिस फ्रस्ट्रेशन वेंट कर रहा था, यार ये कॉर्पोरेट जॉब्स ना इंसान को रोबोट बना देती है। रिद्धि कामली चाय सिप करते हुए बोली, तुम छोड़ दो, सैलरी तुम दोगी, पीस फ्री होती है। धीरज उसे देखता रह गया। कभी कभी उसकी सिंपल लाइन सीधा दिल में घुस जाती थी। एक दिन धीरज ने कैजुअली पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? रिद्धि ने विंडो के बाहर देखा, सबको लाउड लोग ही पसंद होते हैं क्या? नहीं, पर तुम्हारा साइलेंस भी काफी लाउड है। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा और चुप हो गई। शायद काफी टाइम बाद किसी ने उसे जेन्युइनली नोटिस किया था। अब लेट नाइट टेक्स्ट भी स्टार्ट हो गए थे। रीच्ड होम, हाँ, डिनर स्किप, अच्छा नहीं है। तुम डॉक्टर हो? नहीं, फ्यूचर डायबिटीज पेशेंट। रिद्धि ने लाफिंग इमोजी भेजा और धीरज स्क्रीन देखकर स्माइल करता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कब उसकी आदत प्यार बन गई, पर एक चीज क्लियर थी, वो रिद्धि के बिना अपना दिन इमेजिन नहीं कर पा रहा। जैसे कि आप जानते हैं, प्यार एक डेंजरस चीज होती है। जब तक दिल में हो सेफ लगता है, पर जब जुबान तक आता है सब बदल देता है। धीरज ने फाइनली डिसाइड कर दिया था, आज बोलूंगा। पूरी रात उसने प्रैक्टिस की, मिरर के सामने, फोन नोट्स में, माइंड में, हार्ट में। नेक्स्ट डे टी अड्डा अनयूजुअली चुप लग रहा था। रिद्धि यूजुअल कॉर्नर पर खड़ी थी, कोल्ड कॉफी सिप करते हुए। धीरज का हार्ट लिटरली रेस कर रहा था। रिद्धि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिद्धि सीरियस हो गई, हाँ बोलो। धीरज ने डीप ब्रीथ ली, पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, बट आई थिंक आई एम इन लव विद यू। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। रिद्धि उसे देखती रही, ना शॉक ना स्माइल, बस आंखों में दर्द, डीप दर्द। फिर स्लोली उसने कप टेबल पर रखा और धीरज से बोली, धीरज आई एम वेटिंग, बस एक लाइन। और धीरज की दुनिया फ्रीज। उसके दिमाग में सिर्फ वो वर्ड इको हो रहा था, वीडो वीडो वीडो। रिद्धि ने आंखें नीचे कर ली। शादी को सिर्फ 11 दिन ही हुए थे, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। धीरज कुछ बोल नहीं पाए, पर उसके अंदर का जो इमोशंस थे वो सैलाब बन चुके थे। प्यार, शौक, फियर, सोसाइटी, फैमिली, सब एक साथ, सबके सब एक साथ। दीदी उसकी आंखों में कंफ्यूजन देख चुकी थी, इसलिए वो सॉफ्टली बोली, सोके धीरज, तुम मान से मत दो। और वो वहां से चली गई। धीरज वही खड़ा रह गया। कप में चाय ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल उसकी हिम्मत की तरह। तो दोस्तों, अब कहानी में क्या होगा जानते हैं एक ब्रेक के बाद।
1: अखियां देखो ओ मेरी मैया।

वेलकम टू आचार्य 90 FM। हम सुन रहे थे रिद्धि और धीरज की कहानी। एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहाँ पे रिद्धि ने उसे अपना सच बताया और धीरज काफी शौक था। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। उस कन्फेशन के बाद सब चेंज हो गया। धीरज कॉल्स अवॉइड करने लगा, टेक्स ड्राई हो गए, चाय ब्रेक्स स्किप होने लगे और रिद्धि सब समझ गई। एक दिन उसने डायरेक्टली पूछा, तुम डिस्टेंस बना रहे हो? धीरज चुप रहा। मैं समझ सकती हूँ रिद्धि, मैं सोसाइटी टफ होती है धीरज, स्पेशली तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। ये लाइन उसके दिल में सीधा घुस गई पर फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाया और वही उसकी सबसे बड़ी नाकामी थी। एक मंडे मॉर्निंग रिद्धि ऑफिस नहीं आई, ना ट्यूसडे ना वेनसडे। फिर पता चला उसने रिजाइन कर दिया विदाउट गुड बाय, विदाउट क्लोजर, बस चली गई। और उसके बाद टी अड्डा फिर से चाय स्टॉल बन गया। रिद्धि के जाने के बाद धीरज की लाइफ मैकेनिकल हो गई। मीटिंग्स मीनिंगलेस लग गई, सैलरी पॉइंटलेस लग गई। एक दिन उसने लैपटॉप बंद किया और रेजिग्नेशन मेल भेज दिया। सब शौक पागल हो गया है, करियर बर्बाद मत करो। पर धीरज मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट की, मनाली, कसोल, शिमला। और शिमला जाके उसे याद आया

उसने डिसाइड किया कि वो शिमला में एक कैफे खोले। कॉरपोरेट बंदा कैफे ओनर बनेगा। सब हंसे पर धीरज सीरियस था। उसने सेविंग्स लगाई, लोन्स लिए, खुद टेबल स्पिन किए, खुद कॉफी बनाना सीखा, खुद मेन्यू लिखा, 3 साल स्ट्रगल किया। ऑफ सीजन में बहुत सारे लॉस हुए, टूरिस्ट का वेट किया, पर फाइनली शिमला के एक हिल पॉइंट पर एक ब्यूटीफुल कैफे उसने खड़ा किया और कैफे का नाम था हाफ कप कैफे। नाम इंटेंशनली रखा गया क्योंकि उसकी लव स्टोरी भी अधूरी रह गई थी। कैफे कोजी था, वुडन वॉल्स थे, फेरी लाइट्स थी, सॉफ्ट ओल्ड सॉन्ग्स और एक बालकनी जहां से पूरा वैली दिखता था। हर स्नोफॉल में धीरज को रिद्धि की याद आती, हर चाय कप में उसकी कमी फील होती, पर लाइफ जैसे तैसे चल रही थी या शायद बस कट रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी शायद धीरज ने अपनी जिंदगी में कल्पना नहीं की या धीरज

धीरज काउंटर पर बिल्स चेक कर रहा था, तभी एंट्रेंस बेल बजी, टिंग टिंग। उसने कैजुअली ऊपर देखा और उसका हार्ट लिटरली स्टॉप हो गया।

5 साल 1 सेकंड में डिसॉल्व हो गए। धीरज के लिप्स ड्राई हो गए। तुम्हें शिमला पसंद था ना? रिद्धि नम हो गई। दोनों कैफे के कॉर्नर टेबल पर जा बैठे। आउटसाइड स्नोफॉल हो रही है, इनसाइड साइलेंस। फिर रिद्धि बोली, मैंने सुना था तुमने कॉर्पोरेट लीव कर दिया। हाँ, क्यों? धीरज उसकी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि वहां सब था बस सुकून नहीं था। रिद्धि चुप हो गई। धीरज ने फाइनली वो लाइन बोली जो 5 साल पहले बोलनी चाहिए। मैं डर गया था, पता है, पर तुम्हारे जाने के बाद समझा कि लोग क्या कहेंगे से ज्यादा डेंजरस होता है खुद को होना। रिद्धि और ज्यादा नहीं, बहुत लेट कर दिया। धीरज हल्का सा हंसा। माउंटेन्स तक पहुंचने में टाइम लगता है। रिद्धि हंसी।

और वही इमोशनल मोमेंट था जहाँ 5 साल पुरानी अधूरी कहानी फिर से सांस ले रही थी। स्नोफॉल और तेज हो गया। धीरज उसे कैफे बालकनी में ले गया। पूरा शिमला वाइट ब्लैंकेट में कवर था। येलो लाइट्स, कोल्ड हवा और बीच में वो दो। धीरज

उसे इतना धीरज ने कहा और रिद्धि ने उसे तुरंत हाँ कह दिया। तो दोस्तों कभी कभी कुछ फैसले लेने में वक्त तो लगता है, जैसे कि किसी एक शायर ने कहा था और लिखा था, जिसका एक मशहूर गाना भी बना कि प्यार का पहला कत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदे को

तो इसी वक्त तो लगता है के साथ हम आपसे अभी लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले शो पर। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त।

0: बंदे अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा।
1: पहला भाग एखाद वाक्य लगता।

0: पे था विश्वास, आज माँ की आंखों में चमक है कुछ खास।
1: जॉर्ज मिलर यानी द मैजिकल नंबर 7।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: तो असं म्हणाला होता की आपण 7 गोष्टी सहजरित्या चटकन लक्षात ठेवू शकतो। उदाहरणार्थ

అందంగా ఉండవాలి కప్పిస్తే.

0: कधी कधी आठवतात. याचं कारण असं की मेंदूच्या
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें.

0: जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: Seven.

0: नहीं पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
1: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे?
2: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग सारेगामा.com से।
1: उठाना भी सीख जाते। अपने आप को धोखा न दोगे ना? तुम दौलत चाहते, ऊंची सोसाइटी चाहते, समाज में नाम और इज्जत।